थो रेडियो नेपाल ख नेपाल बासी समाचार जिउ पेज बाहिनी नातिस थौ नेपाल सम्म चिन्स पिखु द यहाँ लागा अष्टमी नेपाली काङ्ग्रेस चिन्याका गु त मुज्या यी नेहातेङ्गु दु त मुज्या थौ निनेसिया निता इले यी या खुला मञ्चे उलिज्या जुइगु गोसा दु उलिज्या ज्याजुले नेपाली काङ्ग्रेस नेता पि नाप दे या मु रान्तिक पार्टी नेता पिन्छ नवाइगु नेपाली काङ्ग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसी धैतिगु ख वे कया कथन हेद व न्यासो त मुज्या प्रतिनिधि पिन्छ पोतिका त मिग हे दर्ता न्याके तङ्गु कुदु बन्द सत्रे कने व कस खुनु सभापति उपसभापति महामन्त्री व दाँबरी पिन्छ बिस्कन बिस्कन ज्यापो न्याबुइगु ज्याधलदु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा या केन्द्रीय समिति मिग चङ्गु मु ज्या वैगु स्थानीय निर्वाचन नीति केन्द्रीय उम्मेद्वार लिएको समिति निसोङ्गु दु रासोपा सभापति रवि लामेचान या सभापति ते मिग पार्टी या केन्द्रीय ज्याकु वनस्थली ए चुङ्गु केन्द्रीय समिति मु ज्या पार्टी महामन्त्री विपिन आचार्य कजुते समिति निसोङ्गु ख रासोपा या प्रवक्ता जगदीश कडेल केन्द्रीय समिति मु ज्या केन्द्रीय उम्मेद्वार लिएको समिति मिलन लिम्बू रहबर अन्सारी तोसीमा कार्की कविन्द्र बुर्लाकोटी सुशान्त वैदिक टासी लोहजम व जनक सिंह थामिया त दुज मनिन यागु धाइतिल समिति पार्टी या फुक्क प्रदेश सभापति पि पदेन दुज जुई मुज्या थिथि केन्द्रीय विभागका प्रमुख व उपप्रमुख पिन्त लिगु दु प्रवास सम्पर्क विभागीय मनिष झा आर्थिक व्यवस्थापन विभागीय डाक्टर मनोहर प्रधान कानुनी मामिला तथा संस्थागत अनुपालन विभागे मोहनलाल आचार्य सामाजिक न्याय लैङ्गिक समानता तथा समावेशिता विभागे रुबिना आचार्य सुशासन तथा राज्य व्यवस्था विभागे सुदीप ढकालिया त प्रमुख भाला ललहागोदु अथे विधायन संसदीय मामिला तथा न्याय प्रणाली विभागे सुलभ खरेल कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी विभागे ज्ञानेन्द्र महता श्रम रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा विभागीय दीपक कुमार शाह मोतरी आपूर्ति बजार अनुशासन तथा आपूर्ति बजार सुशासन तथा उपभोक्ता अधिकार विभागीय शर्मिला खनाल व विज्ञान सूचना प्रविधि नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप विभागीय आनन्द बहादुर चन या त प्रमुख लिगुदु अथे संस्कृति पर्यटन तथा राष्ट्रिय सम्पदा विभागीय डाक्टर धनञ्जय रेग्मिया त प्रमुख हो सम्राट बुढाथोकी या त दुज लिगुदु अथे वातावरण जलवायु तथा प्राकृतिक स्रोत विभागीय धर्मकेशी व सामाजिक न्याय तथा समता प्रवर्धन विभागीय रिमा विश्वकर्मा या त प्रमुख मुख पदे लिगुदु अध्यय अभियान तथा प्रसार प्रसार विभागीय उप प्रमुख आनन्द मिश्र व अर्थ विभागीय डिलिश्वर कार्की रोहन या त उप प्रमुख लिगुदु मुज्या केन्द्रीय समिति व प्रतिनिधि सभा दुज या नेतृत्व जिपी वेतेना धैगो अभियान ह्याकेगु कोचुगुदु थोहे असोस बिस निश्चय 27 गते तक केन्द्रीय दुज व सांसद पिन्स नेनुगुली जिल्ला निसो व निसोङ्गु पालिका वना जनता पार्टी व स्वापुदुपिन्त सल ब्याकेगु गोसा गुहातगुदु नेपाल थुसी मनसुन प्रणाली पिहा वनिगु क्रम आन छन्निनु दुनिहे न्यायगु थाहागुदु जल मौसम विज्ञान विभाग एक कथम मनसुन प्रणाली मो जुया वुङ्गुली दक्लेन हापा पश्चिम नेपाल थुकिया बहिर्गमन प्रक्रिया न्यातिङ्गु ख मौसमविद सञ्जीव अधिकारी एक कथम आया चुन्दी दुनिहे पश्चिम क्षेत्र पाखे मनसुन पिहा वनिगु न्याय वुडुङका थो प्रणाली छसी कथम पूर्वी नेपाल पाखे न्याना दे न्यङ्क पाखे पूर्ण रूपमा विधाकाई सामान्यतया नेपालले मनसुन दुहा वैगु औसत तिथि जुन 13 व पिहा उनीको औसत तिथि अक्टोबर 2 तारिक या त कया त गुदु मनसुन या बहिर्गम लिसे थो प्रणाली या हुनी जुइगु मदिक वा वैगु धनी तर मनसुन को चागु या अर्थ व वैगु पूर्ण रूपमा दिगु धासा मखु मनसुनी प्रणाली अन्त्य जुसान पश्चिमी वायु व स्थानीय मौसमी प्रणाली या हुनी दथुई दथुई वा वे फुगु सम्भावना कायमे जुइगु विभाग थागुदु
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह फुक्क नागरिकता छ्या अधिकार चुलाकेगु धैदिगुदु मिग सामाजिक सञ्जाल पाखे थथे या त भवन ऐन 2083 विधेयक संघीय संसद सचिवालय दर्ता जुगु मिदनादिगुदु प्रधानमन्त्री शाह मो आए दुपी मनिते त नापङ्गु छे देखे बले नेपाली नागरिकता सरकार कोचिनातोको छे देखे मागु वो फी रोडा चा सि देवमाको बिगु प्रस्ताव यनादिगु दु अथे हे छे देखे त संघीय सरकार पाके नियदो प्रदेश सरकार पाके नि नियादो यनामुक ने नियादो अनुदान बिगु व्यवस्था यनातोगुदु विधेयक मो आयदुगु छेज या आवश्यक ग्यारेन्टी नाप मध्यम आयदुगु परिवार नीति सुरक्षित व्यवस्थित आव सुनिश्चित दिएको प्रस्ताव यनातोगुदु नापुकुसी छे निर्माण याम नेपाल नागरिकता सरकार कोचनातोको डिजाइन लिसे मापदण्ड कठन छे निर्माण या त माकथ नदीजन्य लिसे प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निशुल्क उपलब्ध याकेगु व्यवस्था प्रस्तावे नेतनातोगुदु विपद प्रभावित असुरक्षित नापन जोखिमपूर्ण बस्ती तेत सुरक्षित थासे स्थानान्तरण याना सरकार नुगु छे निर्माण याना बिगु व्यवस्था न विधेयके नेतनातोगुदु नुगु भवन ऐन नापन नियमावली मध्यम आय दुपी नागरिक नीति सुरक्षित भूखाच प्रतिरोधात्मक लिसे आधारभूत मापदण्ड पुगु स्मार्ट से निर्माण लिसे उपलब्ध याकेगु व्यवस्था प्रस्ताव यनातोगुदु भूगर्भ बित पिन्युगु पुचल मिकनिसे म्याग्दिया चल लिच लागु लागे स्वेगु ज्या यहाँका दिगुदु राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण या समन्वय नेपाल भौगोलिक समाज या नेतृत्व समाज या नायो भास्कर खतिवडा नापया प्राविधिक पुचल थते स्वेगु ज्या यनादिगु ख चल या अवस्था चा या अवस्था थुके त ड्रोन किपा कागु त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पस या उप प्राध्यापक चम्पक बाबु सिलवाल धैदिगु ख असोज आठ गति निसे 11 गति तक वा या हुने चल वो खुसी बाला म्याग्दी नेम सिगु निम तनाचुङ्गुदु सभामुख डोल प्रसाद ओर्याल सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण आ या पुस्ता या भाला जुगु नेतनादिगुदु ज्यापु समाज जेल मिग येले गोसागुगु सुई सोकगु द मुजे वेक्ल नेपा या संस्कृति सम्पदा व सामाजिक लिसे रान्तिक आन्दोलन नेवातेगु महत्व जागु पलादुगु नेतनादिल सभामुख अर्याल वैगु पुस्ता नीति मौलिक संस्कृति व सम्पदा संरक्षण या त व्याधिसे नेवा समुदाय या भाषा कला संस्कृति व सम्पदा संरक्षण या नीति मा कथा कानुन देखे तकु त यागु नेतना दिल राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल शिक्षा मनोते त थगु समाज संस्कृति इतिहास राष्ट्रपति वा च्याके त ऊ उत्तरदायी नागरिक जुके त ग्वाली याइगु कत जुमा धैदिगु दु मिग एले गोसा गोगु छगु ज्याजु स वेक्ल थथे धैदिगु ख राष्ट्रपति पौडेल सूचना प्रविधि या त आपल छेला इल कथ बुनेगु व बुङ्केगु हिकेमा धैदिल परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल जलवायु ह्युपा नाप या प्रि कोप लिडर्स इभेन्ट बुद्धि क्याथ फिजी झादिगुदु फिजी व टुबालुई थोए अक्टोबर 5 व 6 तारिक घोषा गोइगु ज्याजोले बुद्धि क्याथ मन्त्री खनालले नेतृत्व पेम दुज या नेपाली प्रतिमण्डल उखे झाइदिगु ख मन्त्री खनाल अक्टोबर 6 तारिक लिडर्स प्लेनरी ज्याजोले नुवाइगु मन्त्रालय थागु ख थो ज्याजो कोच्याथुङका परराष्ट्र मन्त्री खनाल अस्ट्रेलिया झाया अन्य विदेश मन्त्री पेनी वङ नाप सल व्याका दिगु च्याधलदु पूर्व पश्चिम राजमार्ग नवलप्रासी दाउने मिग सुथे बस झाका मडुपी खुम्सियागु मसिगुदु झाका बस या चालक बाके खजुरा गाउँपालिका दुई या सुई खुद या सुरेश बिसी कोलपुर नगरपाल तिन या सुनिद या दिपेन्द्र केसी कोलपुर दस या नियन याद या एकेन्द्र राज रेग्मी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका सात या निनिद या कृष्ण कनौजिया जाजरकोट या फेरिगङ्गा नौ गरपालिका तिन या नेदया निर्जुङ गुरुङ बाजुरा या स्वामी कार्तिक गाउँपालिका खु
खुइन यादव या नरेन्द्र राज गिरी सिगु जिल्ला प्रहरी ज्याकु या सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक अनिल पण्डित धाइदिगु ख चिन्चाम यात्रु दुगु बस नेपाल गज इ उयाचुङ्गु ख चाकायलाना खापा जुपी चिन्निमेसित थिति अस्ताले वास यनाचुङ्गु दु मोनि वो सोन्तिया इले ए पाखे पिहा ओनिपी मोमो जुयाचुङ्गु दु थुसी च्यागुलाख मुन्त पिहा ओनिगु ढुकुमा नेपाल ट्राफिक या आगुदो नकति यात्रु या आपल चाप जुगुली टिकट मिगु सवारी साधन या अवस्था भाडा दर व यात्रु या सुरक्षा त प्राथमिकतया अनुगमन जुयाचुङ्गु धागुदो यात्रु या त कोसिनातुगु दा पुलित व आधिकारिक काउन्टरे टिकट कायत इनाप नाप या आगुदो हलि ऊर्जा आपूर्ति हात्या अपुया इन्धन या था उनाचुङ्गु भादिके त जी सेभेन राष्ट्रदेश थगु रणनीतिक भण्डार पेलाया सिगु करोड ब्यारेल चिक बजारे हेगु लपु देखुगुदु फ्रान्स राष्ट्रपति इमान्युएल म्याक्रोन या न्या सुजुगु भिडियो त मुजिया लिपा थोको चिना पिहा वगु ख जी सेभेन दे या नेता पि तथी सलकथ अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकाय पाखे रणनीतिक भण्डार चिक डिजेल थथे बजारे छेगु ज्या याई अमेरिका इजरायल व इरान दतुया लुआपुया हुने चिक आपूर्ति व ढुवानी हत्या अपुया अन्तर्राष्ट्रिय बजारे चिक या भा था उनाचुङ्गुदु लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गुए बोलोना चुङ्गु इबोला संक्रमण हो जुया चुङ्गु स्वास्थ्य अधिकारी पिन्छ धाइदिगुदु लिपाङ्गु छु इ थुके तिथि स्वास्थ्य लाग्या नुपि लोगी लुया मोसा पेदो सिमा अपमुनु त सिधङ्कुगुदु नेगु प्रान्ते बोलोङ्गु थो लोच च्यादो सोसो मुनुते त थिगु ख थौ कोसी बागमती गण्डकी व लुम्बिनी प्रदेश या हिमाली व पहाडी लागाए मो अथासे लिसे कर्णाली व सुदूरपश्चिम प्रदेश या हिमाली व पहाडी लागाए छगुनीको थासे वा नाप चापु गाईगु धागुदु कोसी बागमती गण्डकी व लुम्बिनी प्रदेश या तराई लागाए छगुनीको थासे भच्चा वा वैगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग धागुदु मिग सोनिगले निचागु फुटी निगु डिग्री सेल्सियस या क्वाजो लुगुख थौ निकुगु निसे निचागु डिग्री सेल्सियस या क्वाजो लुगु तुकमा यागुदु सोनिगले बुलु चिकुया उनाचुङ्गुदु नेपाल भाषी बुख कोचाला शुभ है।

छु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ सानगिरी ढाङनी दा ढेनमुला ङ इन्दिरा थिङ नेपाली काङ्ग्रेस ला चुई ङा छा ग्रेन ह्वाल तिनी ग्याम ती बामुला परम्परा ला ढेन थेन पोबाला संकल्प समुन्नत नेपाली सबल काङ्ग्रेस ला विकल्प विवाद ताम्दा किन्ची तिनी हेन्से ती बाहिनला ग्रेन दाते ग्रेन ह्वाल्डी पो किनबारी लोलो लोलो ग्लेठिम दल्ला ग्रेन गोबन कारे याम्बुला खला खुला मन्त्री दो बामुला दाते ग्रेन ह्वाल्डी ग्लेठिम दल्ला गोबन कारेसे ग्रेन ह्वाल ज्याना लासी थुम्गाई बिसी लेङमो थान्छु बानमुला थोङसेङ ह्वाल्डी चोहो गगन थापा छ्याम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाला चोहो रवि लामिछाने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाला थुतबोन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गाछाला काइब्लोन डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमालेला लोन्छेन शङ्कर पोखरेल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापपाला चोहो राजेन्द्र लिङ्देन ला छ्याम स्यान्दो गोबोन कादेसेनोन लेङमो थान्छु बानमुला ग्रेन ह्वाल्ला तालिका अनुसार तिनी थोङसेङ सत्र नाङ्गर थिएन रेङ्गेन बन्द सत्र थिएन असोज निचुई घिक थिएन निचुई निला कुनो चुनावला प्रक्रिया ती सेदा मुला मियो निर्वाचन समितिला अनुसार चु ग्रेन ह्वाल्डी तोङ निस ग्यार्जा निस मुल्मी कादेसे पो किन बानमुला काङ्ग्रेसला चुई गाछा ग्रेन ह्वाल्ला बन्द सत्र नोन याम्बुला खुला मन्त्री तासे दामुला बन्द सत्री चोहो रो चोहो लोन्छेन देन नोर चोहोसे लोलन प्रतिभेदन थान्स्युबा गे तालिका मुला नेपाली काङ्ग्रेसला चुई गाछा ग्रेन ह्वाल्दा लोलो लोलो जोङला ग्लेठिम दल थिएन गोबोन कादेसे मानसाङ सानगिर पुइबा मुला काङ्ग्रेसला ग्रेन ह्वाल्दा भारतला सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी भाजपाला चोहो नीतिज नवीन थिएन ग्रेन प्रतिपक्षी दल इन्डियन नेसनल काङ्ग्रेसला चोहो मल्कीका जुन खड्केसेनोन मानसाङ सानगिर सुङबामुला चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सोसलिस्ट इन्टरनेसनललाई चोहो थिएन स्पेनला काइब्लोन पेन्ड्रो सान्जेन सेनोन ग्रेन ह्वाल दा ज्याबा तगाई बिसी सुङबामुला एसिया थिएन युरोपला लोलो लोलो ग्लेठिम दल थिएन गेन्दुन ग्याम्नोन काङ्ग्रेस दा मानसाङ सानगिर पुइबामुला मकवानपुरला मनहरिरी चिनी बिसी युरिया सार युवा सेचामा मेन्दोनिस मिनी आखाम्बा ताबामुला मनहरी गाउँपालिका ब्रे चिसा पानी री तिलमा न्यासे क्युङबा साँदिसी चाबा धुरी चिनी बिबा मान्छी युरिया सार युसी चामा थेनी कादे आखाम्बा ताबा हिन्ला बागमती प्रदेश प्रहरी गेजाङ हेटोडाला सुङबोन एसएसपी राजेन्द्र प्रसाद धमलासे सुङबा अनुसार चुई गिक दिङला आयुषका थिङ चुइगिक दिङला अनुषका थिङ कु दिङला मानवी घ्लान मनहरी ब्रेज सिम पानीला ब्लिची नि दिङला सोम माया रुम्बा नि सोमचुई नि दिङला दिपा थिङ निचुई नि दिङला दावा थिङ थेन गा दिङला सौनीका बल आखाम्बा ताबा मुला आखाम्बा ताबा कादेला चितोन डिमुबा पुरानो मेडिकल कलेजरी मान लबन मुला बिसी प्रदेश प्रहरी गेजाङ हेटोडासे पाङबा मुला रोङसा ब्लोन सिसिर खनाल जलवायु पोवा सम्बन्धी प्री कोप लिडर्स इभेन्ट रिपोर्ट किनबारी तिनी फिजी निस्युबा मुला फिजी थिएन टुभालु री नाङ्गार थिएन रेङेन सेङबा होजा गेखोर री पो किनबारी ब्लोन खनाल्ला गोबाङरी मेन्दो ब्ली सदस्य नेपाली मुल्मी थेतमा होजा हुना निस्युबा किन्ला ब्लोन खनाल से रेङेन थिएन नाङ्गार गेखोर री लेङमो थान्स्युबा ताबा मुला बिसी ब्लोन खाङसे पाङबा मुला सानाम रिथेन पर्यावरण ब्लोन गीता चौधरी से रूपन्देही कपिल वस्तु थिएन नबल परासिला लोलो लोलो ग्ला कोर्सी होजा घ्लाला ताम गोसियुबा मुला ब्लोन चौधरी से सानाम उपकेन्द्र स्यार वितरण केन्द्र सानाम उत्पादन सिँचाइ विद्युतीकरण बिमा थिएन बजारला ताम्री सम्बन्धित गेजाङला अधिकारी थिएन सानाम बोन कादे थिएन लिङमोला सियुबा मुबा ब्लोन चौधरी दा सानाम बोन कादेसे जोङला लानन ग्लारी ताबा लाबा लुङसुर से भालिरी लाबा छेतीला जानकारी लास्युबान राङ कादेसे लाबा उत्पादन से बजार आयाङबा तोबा राङबा टाङ्गा आयाङबा ताम कादे थान्स्युबा मुबा
युलुचो रामचन्द्र पौडेलसे जितिया प्रिभाग्याम नेपाली हुलबारी राङराङ रे डेन गिखेन थेन जामे कोलाला आस्था मौलिक रिमठिम दा सोना लाबान खाबा मुलाबिसी सुङबा मुला जितिया प्रिभाला अप्सरी तिनी हुलचोहो पौडेलसे मोकोन नेपाली दा ज्याबा तगाई सेम सेम भानबा छ्योगाई सुङबान चुराङबा प्रिभासे नेपाली कादेदा गिखेन सोबारी बङ लाला बिसी सुङबा मुला चुनोन प्रिभाला धुरी ग्वेरी लुई खुबा धुरी बाराला देवताल गाउँपालिकारी मेन्दोनी जाजाकोला ब्लुम्सी सिबा मुला देवताल गाउँपालिका डु जवका ला राजेन्द्र कुर्मी ला तारङा ग्वेरी तिलमा ह्यासे लुई खुबा धुरी माबा मेन्दोनी जाजाकोला कादे सिबा धुरी स्याप्पा मुबा बिसी प्रहरी से पाङबा मुला ग्वेरी ब्लुम्सी देवताल गाउँपालिका डु रौबानी ला भोला पटेल ला चिब्ली दिङला झामे निशा पटेल थिएन हो जान ग्लाला राजेश पटेल ला चिब्ली दिङला झामे चान्दनी पटेल शिवा मुला बिसी जोङ प्रहरी गेजाङ बारासे पाङबा मुला ऊर्जा किन्यो थिएन सिँचाइ ब्लोन विराज भक्त श्रेष्ठ से चुइनी दिङ गाछा तिबा तसाइनोन लोलो लोलो कारण से गे लाबारी आखाम्बा हेटोडा ढल्के बर बहर गेजा ब्ली केविला सब स्टेसन च्यासिबा मुला ब्लोन श्रेष्ठला निजी लोनखाङ से पाङबा अनुसार सब स्टेसन डे सोभान लाबा हेटोडा ढल्के बर ग्याजा ब्ली केबी प्रसारण लाइन ला गोर्नी मल्टी सर्किट टावर ला ताम गोसिबा मुबा ब्लोन श्रेष्ठ से हुल्ला ऊर्जा थुम ग्रेन ताबासे टावर लागे योनान जिन्ना लातोला बिसी सुङबा मुबा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाला मियो समितिला तिलमा चिबाची साङसे दाखाबा स्थानीय चुनाव दा मियो उमेरद्वार धाम्बा समिति सोबा मुला रासोपाला चोह रवि लामी छानेला चो बाङ्री तिलमा पार्टी मियो गेजाङ वनस्थली याम्बुरी चिबा मियो समिति चिसाङसे पार्टी लोन्छेन विपिन आचार्यला थुतबोन्डी समिति सोबा हिला रासोपाला सुङबोन जगदीश खरेलसे मियो समितिला चिसाङसे मियो उमेरद्वार धाम्बा समिति मिलन समितिरी मिलन लिम्बु रहबर अन्सारी तोसीमा कार्की कविन्द्र बुर्लाकोटी सुशान्त वैदिक टासी लामजोङ थेन जनक सिंह धामीदा सदस्य मनोनित लाबा मुला बिसी सुङबा मुला नेपाल डिस युवा चिनिया ग्लेबोन चाङ माओ मिङ छ्याम निस सदस्य टोली कोरोना मुर्ताबान तिलमा त्वचा मुस्ताङला लोमानथाङ धोस्युबा मुला ग्लेबोर माओमिङ सोम्रा कोरबारी लोमानथाङ धोस्युबा टोलिरी मेन्डोङा चिनिया लोमानथाङ ग्याम कोरला मुर्ताबान चिनहाना निस्युबा मुला लोमानथाङ गाउँपालिकाला चो तासी नोर्बु गुरुङसे सुङबा अनुसार कोरला नाकाला तामकादे गोबारी चिनला ग्लेबोन मुस्ताङ खासियुबा खिन्ला रेङबा दुई हेन्से बन्द मुबा तातोपानी मुर भिकल्प ताबा केरुङ भोटे कोसी भालग्याम भगर ताबा लिचा कोरला मुर दोषी सेङबा ताम तासी चिबा धुरी चिनिया ग्लेबोनला मुस्ताङ कोरबादा आर्था मानबा मुला हुम्ला जोङला झ्याङ नामखा गाउँपालिका ढुला सुन खानेरी ठोङबा प्रहरी चौकिरी ग्लिङ ताइबा लिचा प्रहरी कादे समस्यारी पर्दीबा मुला सोम्रा ताइबा ग्लिङसे सोम फिट ग्लिङ छ्याबा लिछा चौकिरी घेलाबा प्रहरीदा खाङबा थुङबा क्युइथेन चाबा सेला समस्या ताबा मुला ग्लिङ ताइबा लिछा सुनखानी प्रहरी चौकी मुबा थुम्री ग्लिङ छ्याबा लिछा प्रहरी कादे दा गे लाबारी समस्या ताबा मुला बिसी लिली डुला ओडा चोहो पाल्जोर तामाङसे सुङबा मुला भाल दुई ग्याम जोङला ग्यार्जा सोम दिम थेमे विस्थापित ताबा मुला जोङला ग्यार्जा गिक्से निस चुई दिम छेतिन ताबा मुला बिसाम ग्यार्जा गिक्से गोर सोम चुई धिमरी जाजाकार छेती ताबा मुला जोङ प्रशासन गेजाङ से पाङबा अनुसार गोर्निस पालिका कादेरी गोडु पालिका ला नामसारी छेती ताबा खिन्ला मोकोन बिमा लाना जलजला गाउँपालिकारी ग्यार्जा गिक्से चुई सोम धिमरी लाना छेती ताबा मुला चुराङ लासिन गलकोट नगरपालिका थुम्री असोज कुथेन चुई थेन चुई घिग्ला भाल ढुई थेन लाबा लुङसुरसे गोड डुचुई सोम धिमरी छेती ताबा मुला गलकोट नगरपालिका से पाङबा अनुसार गोर्की ओडा घेजाङ छ्याम गोर डुचुई सोम धिमरी छेती ताबा मुला स्यान्दो ग्यार्जा गिक्से सोमचुई सोम धिमरी जाजाकार छेती ताबा मुला
जोङला तोङ नि ग्याजा गासे मेन्दो ब्ले ब्रिचुई ब्ले झाजा कोला द पाटे घरला सुङला क्यान्सर विरुद्ध एचबिबी खोप पिन बामुला प्रदेश जनस्वास्थ्य गेजाङला अनुसार गेजाङला चुई पालिकाला लोपखाङ रि ब्रिबा डोबा कक्षा डुला तुङ नि ग्याजा गाँसे भ्लिचुई नि थेन लोपखाङ फिर्क्या मुबा चुई धिङला झामेकोला दा खोप पिन बाहिला जोङला गोरचुइन स्थानीय तहला ग्याजा निसे गाँचुई ब्लि लोपखाङ रि खोप केन्द्र तोगलासी अभियान सेङ बामुबा तनहुला भानु नगरपालिका जुई चुई तल्लो मैदान डी तिनी मोटरसाइकल दुर्घटना तामा मेन्दो निमिनी चिबा मुला दुर्घटना ग्याम होजन ग्लारी चिबा ब्लिचुई घा दिङला शङ्कर पाण्डे थिएन डुचुई घा दिङला टङ्क नीति पाण्डे सिबा मुला बिसी जोङ प्रहरी गेजाङ से पाङबा मुला हटिया ग्याम चिसा पानी क्यार निबान लाबा मोटरसाइकल सडक घ्यालाम ग्याम चुई मिटर मार ताइसी दुर्घटना ताबा मुबा दुर्घटना गम्भीर घाइते ताबा मोटरसाइकल सेङबा शङ्कर ला पुरानो मेडिकल कलेज चितवन थेन टङ्कनी तिला प्रदेश अस्पताल लमजुङरी सिबा हिनला बिसी प्रहरी से पाङबा मुला स्यान्स्यु बानो मुबा सानगिर जिन्जी फ्याफुल्ला।

ई रेडियो नेपाल ठीक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। संतानक दीर्घायु सुस्वास्थ्य आ समृद्धि कामना सहित महिलागण द्वारा मनाओल जायवला जितिया पर्व अंतर्गतक निराहार व्रत आइ समापन भेल अछि। तीन दिन धरि विभिन्न विधि पूरा कऽ मनाओल जायवला जितिया पर्व अंतर्गत शुक्र दिन राति उगठन खाकऽ महिलागण व्रत शुरू कयने छली। शनि दिन जल सेहो नहि लए निराहार व्रत बैसल महिलागण आइ भिनसर स्नान कय व्रत समापन कयली। व्रतक दोसर दिन महिलागण जिमूतवाहन देवताक अर्थात धर्मवीर पुत्र जितुवाहन के कथा वाचन तथा पूजा अर्चना कऽ संतानक दीर्घायु कामना कयने छलथि। पर्वक अंतिम दिन विधिपूर्वक फलाहार वा अन्न ग्रहण कऽ व्रत समापन करबाक परम्परा अछि। विशेष कऽ मिथिला तथा तराई मधेशक जिलाक सङ्गे काठमांडू सहित शहरमे रहल मैथिल समुदाय जितिया पर्व मनाओल करैत अछि। जितिया कठोर व्रत मध्य एक मानल जाइत अछि। महिलागण संतान प्रति मातृभाव आ समर्पण प्रकट करैत एक दिन एक राति निराहार उपवास बैसबाक चलन अछि। एहि व्रतक प्रभाव सँ संतानक दीर्घायु हेबाक जनविश्वास रहल अछि। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ हेटौड़ा ढलकेवर 400 KV सब स्टेशन के निरीक्षण कयलनि अछि। मंत्री श्रेष्ठक निजी सचिवालय के अनुसार सब स्टेशन में निर्माणाधीन हेटौड़ा ढलकेवर 400 KV प्रसारण लाइन के दूटा मल्टी सर्किट टावर संबंध में ओ जानकारी लेलनि। मंत्री श्रेष्ठ देशक ऊर्जा मेरुदंडक रूप में रहल टावर के काज समय में सम्पन्न कयल जेबाक बात पर जोर देलनि। प्रसारण लाइन निर्माण 12 वर्ष पहिने प्रारंभ भेलाक बावजूदो विविध कारण सँ काज अवरुद्ध भेल छल। जनमत पार्टीक अध्यक्षमे पुनः डॉक्टर चंद्रकांत सीके राउत निर्विरोध निर्वाचित भेलाह अछि। पार्टीक बीरगंजमे सम्पन्न दोसर महाधिवेशनमे अध्यक्ष पद पर वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर राउतक एकल उम्मीदवारी पड़ल छल। पार्टीक विधान अनुसार हरेक उम्मीदवार 20% सँ अधिक मत अनबाक व्यवस्था रहलाक कारणे अध्यक्ष पदमे एकल उम्मीदवारी पड़ल आ मतदान भेल छल। खसल कुल 1126 सदर मत मध्य 958 मत आनिकए अध्यक्ष पद में डॉक्टर राउत निर्विरोध निर्वाचित भेलाह अछि। 7 गोटे उपाध्यक्ष के लेल 11 गोटे के उम्मीदवारी पड़ला पर अनीता कुमारी मंडल सिरहा 608 मत, अनीता देव सा धनसा 606 मत, नरेंद्र प्रसाद चौधरी कपिल वस्तु 603 मत, वसंत कुशवाहा रोथट 585 मत, डॉक्टर जयकांत राउत सप्तरी 573 मत, राजकुमार यादव त्यागी सिरहा 556 मत आ माधव प्रसाद सिंह परसा 396 मत आनिके विजय भेलाह अछि। परमेश्वर मुर्मू 315 मत, रोशन खातून 264 मत, हरपाल सिंह सोरी 315 मत आ मनोहरी देवी बैठा 266 मत अन्य छलथि। एक गोटे महासचिवक लेल 3 गोटे के उम्मीदवारी पड़ला पर संजय कुमार यादव सिरहा 618 मत आनिके विजय भेलाह अछि। एहिना चंदन सिंह महतरी आ ममता झा सप्तरी 20% थ्रेश होल्ड कटायब नहि सकल। एहिना एक का उमेश महासचिवक लेल पड़ल 2 गोटे उम्मीदवारी मध्य निर्मल कुमार मंडल सिरहा 501 मत आनिके 414 मत लाल ललित चंद्र मल्लिक रौतहट के पाछू करैत विजय भेला। 7 गोटे सचिवक लेल 9 गोटे उम्मीदवारी पड़ला पर सुरेंद्र शर्मा मधेसी 535 मत आ पारस प्रसाद साह 12 525 मत, संतोष कुमार सहनी धौनसा 504 मत, अंजनी देवी महतरी 497 मत, राधा कुमारी यादव बांके 493 मत, हरेंद्र चौधरी रोथड 460 मत, बाल गोविंद चौधरी नवल परासी 445 मत आनिके विजय भेला। वीरेंद्र महतो जीवन त्यागी महतरी 444 मत आ रामबाबू साह 12 438 मत आनिके ओ मतांतर सँ पराजित भेलथि। लुम्बिनी प्रदेशक मुख्यमंत्री चेतनारायण आचार्य स्वास्थ्य क्षेत्र में विनियोजन भेल बजट प्रभावकारी रूप में कार्यान्वयन करबाक लेल निर्देशन देलनि अछि। संघीय सरकार सँ प्राप्त सशस्त्र अनुदानक रकम खर्च नहि भऽ सकला पर फिरता हेबाक अवस्था अंत कयल जेबाक बात पर ओ जोर देलनि। राप्ती उपत्यका देवखुरी में आइ भेल आर्थिक वर्ष 2082-83 में सम्पादित स्वास्थ्य कार्यक्रमक प्रदेश स्तरीय समीक्षा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आचार्य प्रदेशक कुल बजट के लगभग 15% स्वास्थ्य
क्षेत्र में विनियोजन कैल ओ जानकारी दिलन। प्रदेश आ स्थानीय तहवी समन्वयक स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन कैल जेबाक बाद पर मुख्यमंत्री आचार्य कुपोषण न्यूनीकरण के प्राथमिकता में राखिक कार्यक्रम संचालन कैल जेबाक बात पर जोर दिलन। स्थानीय तह से समन्वयक कुपोषण अधिक देखल गेल तराइक दक्षिण क्षेत्र में कार्यक्रम केन्द्रित कैल जेबाक हुनक कथन अछि। विद्यालय केन्द्रित स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्राथमिकता में राखल जेबाक हेतु मुख्यमंत्री आचार्य विद्यालय तह से स्वास्थ्य जीवन शैली आ पोषण संबंधी चेतना विकास करबाक लेल आवश्यक रहल बतौलनि। स्वास्थ्यक विभिन्न सूचक में सुधारक संकेत देखल गेलाक बावजूदो खोप के सूचक में थप सुधार आवश्यक रहल ओ बतौलनि। नेकपा एमालेक महासचिव शंकर पोखरेल नेपाली कांग्रेस से मिलकर लोकतंत्रक रक्षा देशक मुहार परिवर्तन करबाक समय आयल बतौलन। नेपाली कांग्रेसक 15 महाधिवेशनक उद्घाटन समारोह के संबोधित करैत पोखरेल कांग्रेस सभापति गगन कुमार थापा गणतंत्र स्थापनाक लेल भेल आंदोलन में हमरा सब संग रहल स्मरण कैलन। त्रिचंद कैंपस के सभा से लकर हमसब स्वयं संगे रहल उल्लेख करैत ओ थापा कांग्रेसक नेतृत्व में आयल सकारात्मक भेल बतौलन। ओ कांग्रेस से पुनः सहकार कर लोकतंत्रक रक्षा देशक मुहार फेरल जेबाक बात बतौलन। राणा शासन पंचायत आ ज्ञानेन्द्र शाहक शासन विरुद्ध सेहो हमसब कांग्रेस संग मिलकर आगू बढ़ल स्मरण करैत ओ अगला दिन में सेहो सहकार आवश्यक रहल बतौलन। श्रम संस्कृति पार्टीक महासचिव आरन राय हल्लाक भर में नहीं भा लंबा संघर्ष त्याग बलिदान से नेपाली कांग्रेस स्थापना भेल बतौलन। पार्टीक आई से शुरू भेल 15 राष्ट्रीय महाधिवेशनक उद्घाटन सत्र में शुभकामना मंत्र व्यक्त करैत महासचिव राय नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापनाक लेल कांग्रेस महत्वपूर्ण भूमिका खेलल स्मरण कैलन। महासचिव राय कांग्रेस अगला दिन में सत्ता में कते समय रह से अधिक जनताक पक्ष में कतेक नीक काज कऽ सकैत अछि एहि विषय के प्राथमिकता में राखल जेबाक धारणा व्यक्त कैलन। राष्ट्रीय उन्मुक्ति पार्टी नेपालक संस्थापक रेशम लाल चौधरी राणा शासन आ पंचायती व्यवस्था के अंत तथा विद्यमान संविधान निर्माण में कांग्रेस नेतृदायी भूमिका निर्वाह कैल बतौलन। देशक परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रम तथा बदलित परिस्थिति आ परिवेश बीच कांग्रेस एखनो सशक्त आ जिम्मेवार ढंग से आगू बढ़बाक चर्चा करैत जारी महाधिवेशन सफलता कामना कैलन। राष्ट्र जनमोर्चा कार्यवाहक महासचिव घनश्याम न्यूपाने कांग्रेसक 15 महाधिवेशन ऐतिहासिक स्थल में महाधिवेशन होबय लगला पर खुशी व्यक्त करैत देशक समग्र भविष्यक दिशा निर्धारण करबाक लेल महाधिवेशन सफल हुए से कहि शुभकामना दलन। देशक विशिष्ट राजनीतिक घटनाक्रम आ परिस्थिति बीच होमय लागल एहि महाधिवेशन से कांग्रेसक आंतरिक जीवन में मात्र निभा देशक लोकतांत्रिक प्रणालीक सुदृढ़ीकरण के लेल सेहो योगदान पहुँचबाक विश्वास व्यक्त कैलन। नेपाली कांग्रेस पार्टीक सबसे पुरान पार्टीक सदस्यता लेल प्रजातंत्र सेनानी मथुरा प्रसाद श्रेष्ठ के सम्मान कैलक। पार्टीक 15 महाधिवेशन के उद्घाटन सत्र के क्रम में आइ खुला मंच में आयोजित कार्यक्रम में सभापति गगन कुमार थापा हुनका प्रमाण पत्र प्रदान कैलन। गुलमिक तामघासक 94 वर्षीय श्रेष्ठ 2007 साल चैत्र 26 गते 18 वर्षक उम्र में तत्कालीन पार्टी सभापति मातृका प्रसाद कोइराला के हाथ से सदस्यता लेने छलथि। हेटौड़ा ढलकेवर इनरवा 400 के भी प्रसारण लाइन अंतर्गत रोथट के चंदपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 4 स्थित चांदी खोला में रहल 208 नंबर के टावर नदी कटान के कारण जोखिम में पड़ल। चांदी नदी टावर के सुरक्षा के लिए निर्माण कैल तटबंध के भारी हिस्सा कटान के ढालाक बाद नदी के बहाव टावर के पिलर के निकट पहुँचल जनाओल गेल। बीतल सावनक अंतिम दिन आयल बाढ़ के कारणे एहि तटबंध के एक भाग ढालाक बाद नदी निरंतर टावर आसपास के जमीन कटान कऽ रहल स्थानीयवासी सब बतौलक। उम्हर नेपाल भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजनक प्रमुख श्याम कुमार यादव टावर के जग मजबूत रहला कारणे हाल के कटान से तत्काल भारी असर पड़बाक अवस्था नहीं रहल बतौलन। टावर के जग निर्माण करैत काल आवश्यक प्राविधिक मापदंड अपनाओल गेल ओ जानकारी दिलन। हुनका अनुसार आयोजना से नदी कटान के अवस्था के निगरानी कऽ रहल आ वर्षा रोकलाक बाद दशहरा तिहार लगते टावर आसपास के कटान रोकथाम तथा संरक्षण के काज आगू बढ़ेबाक बात बतौलन। हेटौड़ा ढलकेवर इनरवा 400 के भी प्रसारण लाइन अंतर्गतक टावर के ऊंचाई लगभग 180 फीट धरि होबाक आ टावर निर्माण में टावर के प्रकार अनुसार 1 करोड़ टका से खर्च होबाक ढलकेवर हेटौड़ा इनरवा 400 के भी सब स्टेशन हेटौड़ाक प्रमुख अमर दहाल बतौलन। ओ टावर संरक्षण के लिए निर्माण कैल संरचना बस्ती में असर नहीं पड़बाक दावी सेहो कैलन। चंद्रपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 4 के वार्ड अध्यक्ष रवि राणा मगर टावर संरक्षण के लिए तत्काल मरम्मत करबाक लेल आयोजना के
पत्राचार कयल बतौलनि। ओ सम्बन्धित निकाय जल्दिए समस्या समाधान करबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। स्थानीय अगिला बाढ़िसँ ई जोखिम न्यूनीकरण तथा तटबन्ध संरक्षण काज शुरू कयल जेबाक हुनक सभक मांग रहल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कृत्रिम बौद्धिकता AI संबंधी व्हाइट हाउस के नया कार्यदल एहि प्रविधि के जोखिम अवसर सभक मूल्यांकन करबाक संगे नव प्रवर्तन के अवरुद्ध करयवला अत्यधिक नियमन रोकबाक लेल पहल करयवला भेल अछि। रेडियो नेपाल सँ सुनै छलहुँ मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।